चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में फिर किसी को पकड़ा जकड़ा किसी को पल भर में चली ये फौज हमारी रे चल चलम चल चलम चल छिड़ी लड़ाई भारी रे चल चलम चल चलम चल।

बस बस बस बस बस बस बस पूछा है मैंने इनका पता, अरे तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमकारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: कर लो याद तुम प्रेम का पान।
1: दो पंजे दस, दो छक्के बारह,
0: चमक चमक तकदीर का तारा।
1: दो छक्के चौदह, दो छक्के सोलह,
0: मैं हूँ आग और तू है शोला।

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है, एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझाया है।

माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, गुरुदेव ज्ञान के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा संतों के सत्संग से जीवन की बुराइयां दूर होती हैं। हम इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं, अतः इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म होना चाहिए।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhof 5 kilometer. Met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंड उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबुल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

लेके पहला पहला प्यार आया है कोई जादूगर, उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये। और इस हिस्सा प्रोग्राम का इस हिस्सा में शामिल जो आप हुए हैं, वेलकम।

उत्कर्ष सक्सेना से आप इस गीत को सुने। हम लोगों का ताड़का नंबर याद वेल तैदिंस कंतोर उरन दफ्तर के समय 020 409 0807।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में एक नजारा बन गया। उजाला रेडियो द लक्सटर एंड गजलस्टर रेडियो।

0: जी मेम साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम?

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला हो गया म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए रेडी 1 2 3 4 ला

आशा भोसले एंड किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ फिल्म का नाम यादों की बारात और ये है उजाला रेडियो. Behalve bellen natuurlijk, kunt u altijd nog een mailtje sturen naar info@ujala.nl.

आवाज रूप कुमार राठौर की एवड फिल्म अनवर का गीत आज उजाला रेडियो का प्रोग्राम में हम आपको सुनाइए और अगला गीत कमाल खान की आवाज में होंगे।

जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, कमाल खान की आवाज और फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। किस फॉर योर आइकन रेडियो, किस ऑल टाइट फॉर उजाला रेडियो, तू जाने तो।

छोड़ो सनम काहे को गम, हंसते रहो खिलते रहो। फिल्म कुदरत का गीत, किशोर कुमार एंड अनंत पिंटो से आप सुने। प्रोग्राम का इस हिस्सा में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे, या हमारे कौम तो रुख तू जाने है तो।

नम्र संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: कसम।
1: और कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। लता जी के साथ अमित कुमार से गीत को आप सुने, फिल्म लव स्टोरी से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर।

प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वाले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। मैं हूं सुभाष और दहाचक जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी बहु आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद ईयर्स के जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लेचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए।

उछला रेडियो का दफ्तर सोमवार से लेकर शनिवार तक खुला रहता है और वो भी सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक फन मानदख्त में सातना फन तीन स्मार्खुस तो द्रीर इंद मेरा जहां का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप लोग तार कर सकें। उजाला का वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर जानकारी आपको मिल सकेगा। हमारे प्यारे श्रोता प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं एक ऐसा है गीत जो प्रोग्राम में हमेशा हमेशा सुनने के काबिल है।

वेल क्या हुआ तेरा वादा। इस तरह से महमद रफी साहब के आवास में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने। यू आर उजाला रेडियो है।

0: हुआ यार मेरा यार मुस्कुराता हुआ
1: यार मेरा यार।
0: और गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने खान शर के किशोर कुमार जी के आवाज में, चलिए अब की बार श्री मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग

0: हंसनी कहां उड़ चली। आओ इस तरह से किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, बोले पंख उड़ाकर कहां उड़ चली। उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनल लता एंड किशोर कुमार के आवाज में गाना जो इस बार आप लोग सुनेंगे,
1: कहा सुना कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं।

0: हल सुनो
1: रुकी,
0: अब बोले कहो
1: कुछ हुआ क्या,
0: कुछ हुआ क्या यार अविश्वरत से खान सर के लता एंड किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने वालों।

बल यार जब दिन हसीन और दिल जो जवान, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने मोहम्मद रफियन अश

मुझसे तुमसे मोहब्बत हो गई यार, पलकों में रहने दो, एहसान होगा तेरा। अवसरों से मोहम्मद रफी जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

और रब्बा आई ना जुदाई, फिल्म जुदाई का टाइटल सॉन्ग आप सुने अलका अलका याग्निक, हरी हरन और जसपिंदर।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम ओस फ्रोलिक्सराट से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त ख्यार औत बेटा किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस ट्रांसवालसराट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम ओस फ्रोलिक्सराट से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त ख्यार औत बेटा किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस ट्रांसवालसराट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक अल्टफार्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 3:30 बजे जोंदाख आंस्टांद हालफीर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग परिवार अकलू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

रेडियो सुनने वाला और उजाला रेडियो के जरिए आज वही प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो हम नहीं पेश करने वाले हैं दुजनीत क्योंकि हम लोग तो बता चुके रही तो कभी कभी हम लोग के काम हो जाए af en toe dan hebben we het ook een beetje druk. Dus vandaag geen Coffee Jai middagshow. En morgen vrijdag, kool zoeken we een keer programma met Coffee Jai middagshow. Zerur ham peesken wel een haapje waarschijnlijk.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

0: के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो।
1: दिल की धड़कनों के साथ उजाला रेडियो।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कांधाई और परिवार झंझन, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 73 साल की आयु में द्रियन जीवंतक यार औत लुविस झंझन कांधाई और परिवार, जॉनी कांधाई और परिवार, कार्ला कांधाई और सूरीनाम से वेली पाटक, इन लोगों के भाई अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और पहले सूरीनाम पथ मनवानी का ब्राम्स होपवेग का रहने वाला जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कांधाई और परिवार झंझन, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 73 साल के आयु में द्रियन जीवन तक यार औत नीदरलैंड से लुविस झंझन कांधाई और परिवार, जॉनी कांधाई और परिवार, कार्ला कांधाई और सूरीनाम से वेली पाटक, इन सभी के भाई अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कांधाई की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे, पहले सूरीनाम पथवनवानी का ब्राम्स होपवेग का रहने वाला जो था। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार दिन में 1:30 बजे मोरखन फ्रेडक हालफ्टवे किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में नीवा स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार कांधाई और परिवार झंझन और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: आज यहाँ।
1: और मृत्यु समाचार को आप सुनिए अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और बेटा महेंद्र अकलू की माँ और श्रीमती इंद्रानी अकलू की सास, लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी, अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम से महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास, नीलेश और दिनेश अकलू के आजी, अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बीफे के रात में 8 बजे तक एटफार्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले एतवार दिन में 3:30 बजे जोंदखानस्तांद हालफीर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरसोरखिंग समस्त परिवार अकलू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

है। मुकेश एंड शारदा से आप सुने फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का गीत, और इसी गीत के साथ उजाला रेडियो का प्रोग्राम का इस हिस्सा में आपको स्वागत करता हूं। कुछ पुराने गीतों के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं।

अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, ये वादा है कि आधी रात हो जाने पर हम जाने देंगे तुम्हें। लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म नागिन का गीत, और अगला गीत भी लता जी की आवाज में होंगे।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ,
1: आ जा रे जरा। आज के अब तक आज के सभी गीतों में आने की बात और फिर ना जाने की बात, मोहम्मद रफी साहब से आप सुने फिल्म लव इन टोक्यो का गीत, और ऐसे फिर आने की बात और ना जाने की बात अगला गीत में भी है।

अभी नहीं, ना ना ना, थोड़ी देर और रुक जा, फिर हम जाने देंगे। शारदा की आवाज अराउंड द वर्ल्ड से आप सुने गीत। फिर वही बात, सैया छोड़ दे बैया, फिर आने की बात और ना जाने की बात।

दिनों तो ऐसा होता था ना, जो कोई किसी का हाथ पकड़ लेता था तो नहीं छोड़ता था, और आज इन दिनों के बात है, इन दिनों तो हाथ कोई पकड़ता नहीं तो छोड़ने की बात भी पैदा नहीं होती है ना। तो या

हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। गीता दत्त एंड मोहम्मद रफी साहब से आप सुने फिल्म CID का गीत और ये उजाला रेडियो है। आज एक बार फिर कुछ पुराने गीतों के साथ।

जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आशा जी के साथ मोहम्मद रफी साहब, फिल्म घराना का गीत आप सुने। एंड न्यू एक बार फिर लता जी।

0: Thank you.
1: हर मूड, हर मौसम, हर वक्त का म्यूजिक सिर्फ उजाला रेडियो पर।

ये है उजाला रेडियो, यहाँ म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट, नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खातिर।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए, पेश है एक बैठक गाना हरिदत्त जय राम की आवाज में, सुनिए।
1: जन्म में मनुष्य के जन्म पाए लाई मनुष्य रहा इंसान, एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर, इस जन्म में देख अब गधा बन के भोगे भैया हफीस।
2: अच्छा भैया जयराम, तब जब तू मरिए तब तू कौन की होगा?
1: देख भैया हफीस, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जाए और जो मरब तैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

ताली ताक धुम ताक ताली ताक धुम ताक झाला आंब ताक धुक ताक ताली गेन तू ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता जग तारी ता झन झाले कोकु तारी ताक तारी गेटे ताक झुम तारी ता जग तारी ता झन झाले कोकु तारी ताक तारी गेटे झम तारी जग तारी ताक नाक ताक ताक झुम ताक झुम ताक झम तारी जग तारी झाले झाले